0: किसी से न तमाम बने दे बाहर जो माता से रिता थी इनका नो नहीं बोले अफेयर का जो बता साउदी बाकुम्बा से ना पूजा बत्ती में पिसल
1: Ovintis, nemak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.